0: इश्क बयान किया तो ऐसे.
1: दिस गाय हैड अ स्टेशनरी बॉक्स है. ऑल द कलर्स ऑफ द पेन्स आई लव्ड इट. मोहम्मद रफी ओनली ऑन ईस्ट एफएम.
0: वेल फॉर नाउ आतिफ असलम ओनली ऑन ईस्ट एफएम.
2: Breakfast with Raymond and Jamil.

0: और पहले घंटे में इतने भी पुराने गाने नहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता से पुरानों में भी चले जाएंगे, पुराने दौर में। लेकिन सबसे पहले आपके जो पैगाम आता है, सब पहला सना काना, आपने कहा नया दिन है, नया माह है, गुड मॉर्निंग। और क्या कहा है, कहते पीपल डोंट नीड एनी टूल्स टू हर्ट यू। समझ, अगर किसी ने आपका दिल दुखाना है उसके लिए उसको कोई आला नहीं चाहिए, कोई हथियार नहीं चाहिए, उसके पास है ना एक हथियार, उनके अल्फाज। मैं कहने लगी थी उनकी जुबान, लेकिन कहते उनकी उनके जो अल्फाज होते हैं ना, वर्ड्स आर इनफ। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है सना। अमीर अली राना कहते हैं कि देखो, गोरे रंग पर इतना गुरूर अच्छा नहीं गालिब, गोरे रंग पर इतना गुरूर अच्छा नहीं गालिब, मैंने दूध से ज्यादा चाय के दीवाने देखे। वाह क्या बात लिखी है, क्या कमाल है अमीर अली राना। आप इतना परस्तिश करते हैं सफेद की, दूध की, दूध जैसा रंग, कहते हैं ज्यादा लोग चाय के दीवाने होते हैं। लंदन से रंजन विनोद, डियर लिसनर्स को याद किया है, सबका स्वागत किया है।
1: तूने ओ रंगीले, ये गाना फिल्म कुदरत का है, जिसको लता मंगेशकर ने गाया है, जिसको मंजू सुल्तानपुरी ने लिखा है और जिसकी धुन आर डी बर्मन ने बनाई है। ये गाना हेमा मालिनी पे फिल्माया गया है, उसके साथ मूवी में राजेंद्र कुमार, राजकुमार, विनोद मेहरा, जितेंद्र, वो सब ने काम किया है। गाना अच्छा लगा, सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: और अच्छा था, बहुत ही खूबसूरत, मतलब फिल्म में भी अच्छी तरह से फिट हो गया होगा। चंद्रिका वसंत गोसाई, आप सुन रही हैं और कहती हैं पहले गाने का ही शुक्रिया कर दिया था।

0: बहुत ही किसी ने अच्छी धुन बनाई है। और अब पहले शाबिया का मैसेज। शाबिया कहती है, कल मैंने आपको कहा था कि ईस्ट एफएम ने हमारा दिल चुरा लिया है। दरअसल पता है कौन है? आप हैं मेरी बहन, आपने दिल चुराया है, इसलिए आपको जुर्माना होगा। ठीक है शाबिया, आप सुनती रही, मैं जुर्माना देने के लिए तैयार, शर्त यह है कि आप रोजाना प्रोग्राम सुने। थैंक यू शाबिया। और पहले मैसेज आया है किसका, वो भी सुन लेते हैं। सलमा अहमद लगती हैं।
1: क्या शायरी है, चुप रहोगे तो बात कौन करेगा, हम नहीं रहे तो याद कौन करेगा। माना कि हम इतने अच्छे नहीं हैं, पर हम ना रहे तो परेशान कौन करेगा। शुक्रिया, सुबह का प्यार सलाम, सलमा अहमद की सुमो।
0: क्या बात है सलमा अहमद की। अगला जो मैसेज आया है वो किसका है? दिल दुखाने का मैसेज सुना मैंने फ्रॉम सना का। ऑन दैट नोट आई वुड से, माफिया गलतियों की मांगी जाती हैं। दिल दुखाने का तो मकाफात अमल होता है, समझ, मकाफात अमल। अगर आप कुछ करेंगे तो उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। कोई आप गुनाह करते हैं तो आपकी झोली में आके पड़ता है, आपको सज़ा वो ऊपर वाला देता है, उसको कहते हैं मकाफात अमल। तो कहते हैं माफियां गलतियों की मांगी जाती हैं, दिल दुखाने का तो मकाफात अमल होता है। लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट प्रोग्राम सारा जुनेजा। क्या बात है सारा जुनेजा, इतनी खामोश रहती है, महीनों खामोश रहकर फिर समथिंग रियली ब्रिलियंट। थैंक यू शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। द लॉन्गेस्ट नर्व इन योर बॉडी, समझ, ये जो होती है ना जो नर्व है, ब्लड वेसल जो होती हैं, आर्टरीज हुई, वेन्स हुई, न जाने कितनी कितनी किस्में हैं, खैर आपके जिस्म में हैं ये। तो द लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी नर्व कौन सी? इट रन्स फ्रॉम योर लोअर स्पाइन टू योर फुट। अच्छा, ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, उसका नीचे का हिस्सा ले लो, वहां से एक नर्व निकलती है, आपके पांव चक जाती है, एक नर्व। एवरी स्टेप डिपेंड्स ऑन इट, पिंच इट, द पेन डज नॉट स्टे लोकल। हिप, थाई, काफ, फुट, सेवरल रूट्स, वन पाथवे। ये इतनी लंबी नर्व है, समन कहते हैं कि ये चलती है, पाँव में जाती है, टांग में जाती है, आपके थाई में। तो कहते हैं सिंगल केबल, योर होल लेग इज आंसरिंग। कहते हैं ये एक केबल है, ये नर्व, उसको सायाटिक नर्व कहते हैं, सायाटिक नर्व। बहुत शुक्रिया शमीम, दैट वॉज अ गुड वन। और सोनल मोदा ने आप सबको सलाम कर दिया। और एम एल विश्वकर्मा फ्रॉम इंडिया, life is like a thread, it gets tangled, snaps, but in the right hands it turns into something beautiful. ye dhaga hai na, ye gunjal munjal bhi ho jata, tangle ho jata hai samin, lekin kehte hain ki agar sahi bande ne pakda ho na to ye bahut khoobsurat hota hai. kya baat hai, ml vish

0: आपका फेवरेट गाना जो भी अभी मैंने एक सुनाया है, आप कहते हैं बहुत ही पसंद आया, व्हाट अ लवली स्टार, रजब अली की बीवी जायदा, बहुत खुशी हुई सामने इनसे मिलकर ओवर द वीकेंड संडे के दिन। और ये बात है कि पर जो है परवीन भट्ट वो भी कॉल कर रही हैं और उनकी जानिब से मुझे पता है उन्होंने क्या कहना है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, नेक तमन्नाएं आपको भेजती हैं। अब यहाँ पर लखबीर क्या कहती है, कहती लर्न टू बी क्वाइट, खामोश रहना सीखो। समझ, अगर मैंने खामोश रहना सीख लिया तो प्रोग्राम कैसे होगा? सो ये किस तरह का है? नहीं, पर उन्होंने कहा है लर्न टू बी क्वाइट, एवरी वन इज नॉट ऑन योर टीम, हर एक को ना समझो कि वो मेरा टीम मेट है। ओके, ठीक है, बड़ी अच्छी सलाह है। और चलते हैं रुखसाना शबीर, गुड मॉर्निंग माई टू फ्रेंड्स आर ग्रीटिंग ऑल ऑफ यू। अच्छा, टू फ्रेंड्स के नाम भी दें, एक का तो नरगिस है, दोनों नाम दे दें प्लीज। समय, मुझे दो खवातीन मिली ऑन संडे एक फंक्शन पर, तो कहती हैं कि वो उन्होंने इनको पैगाम भेजा है कि इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग दैट यू प्लेड एंड दे वर सो प्लीज टू मीट यू ऑन संडे। जी समन, मैं इन दोनों खवातीन से मिलकर बहुत खुश हुई। एक तो वो जो नरगिस थी, उन्होंने कहा कितने बरसों से आपको सुन रही हूँ, जब से ईस्ट एफएम शुरू हुआ समन। लेकिन ये बात है कि मुझे एक लॉयर भी मिले, उनका नाम मैं अभी नहीं, क्योंकि वो जाने माने लॉयर हैं, उन्होंने भी कहा कि मैं तो साइलेंट लिसनर हूँ। मैं क्या, व्हाट अ पिटी, कहते क्यों? मैंने कहा नहीं, आपको बताना चाहिए कि आप सुन रहे हैं, हमें भी पता चले, इतने एजुकेटेड लोग भी जुड़े हुए हैं, तो कहते हुए हम ज़रा एहतियात बरते हैं ना। तो खैर, होती रहती है मुलाकात, बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू रुखसाना शबीर।
1: On myjobsinkenya.com.
2: Our client in the FMCG industry is seeking to recruit head of exports. Bachelor's degree in international trade, agribusiness, supply chain, business management or a related field, certification in export management or international trade law, and a minimum 10 years of progressive experience in export operations with at least 5 years in a senior leadership role is required. A master's in any field is an added advantage. Visit myjobsinkenya.com to apply. Our client is looking for a hands-on operations and sales executive. Diploma in business, sales and marketing, supply chain or a related field, 2 to 3 years of experience in sales, operations or FMCG, and is based in or willing to relocate to Kitale with regular travel to other towns for supplier and customer visits is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
1: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. MyJobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
3: More of Kenya's premier Asian mix, East FM.

0: ये गाना मैंने नहीं लगाना था, मशीन ने खुद चूज कर लिया, लेकिन पारो कहती है आपने आज रिकॉर्ड ब्रेक किया। एक्चुअली मैंने कभी ये गाना नहीं आपको सुनाया और मुझे ये भी नहीं इल्म था कि लता रफी का है। ओह क्या बात है, पारो चोड़ा ने एंजॉय किया और उन्होंने भी किया होगा आई एम श्योर। थैंक यू पारो। और विमल चड्डा कहते हैं कि देखो अपने आप के बारे में अच्छी अच्छी बातें किया करो, टॉक पॉजिटिवली अबाउट योरसेल्फ। क्यों? कहते हैं कि आवर माइंड बिलीव्स व्हाट वी से अबाउट आवरसेल्फ्स। ये जो हमारा मन है ना, ये सब यकीन कर लेता है। अगर आप अच्छी बातें करेंगे ना, वो मान जाएगा। स्पीकिंग पॉजिटिवली बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको बाएतमाद कर देगा, वाइल नेगेटिव वर्ड्स ब्रेक इट। सो अपने आप के बारे में अच्छे अच्छे कहो, को मैं बेस्ट हूँ। वैसे ही विमल चड्डा मैंने देखा है, हर कोई समझता है कि वो सबसे अच्छा, सबसे नेक, सबसे बेहतर है। वैसे ही ये ना भी करें तो कमाल है। थैंक यू लखबीर। ओके और शोभना और दिनेश कहते हैं कि प्योर मैजिक इज फेल्ट लिसनिंग टू दिस मैग्निफिसेंट प्रोग्राम। शोभना एंड दिनेश मुझे बहुत इनकरेज करते हैं। देखे ना, अब ये मैं जब सुनती हूँ ऐसे अल्फाज, प्योर मैजिक ऑफ मैग्निफिसेंट प्रोग्राम, समझ, इंग्लिश की भी बात ही कुछ और है। जिन्होंने समझी हुई है, जिन्होंने ग्रामर पढ़ी हुई है ना, उनका दिल खुश हो जाता है अच्छी इंग्लिश सुनकर। रियल एसेंस ऑफ म्यूजिक इन द प्लेलिस्ट। शोभना एंड दिनेश बहुत मेहरबानी आपकी। हेलो परवीन जी, गुड मॉर्निंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, आई हैव नो वर्ड्स फॉर यू, कीप अप। मुझे पता आप क्यों कह रही हैं भाविनी, क्योंकि थोड़े मैंने ना इतने सो ओल्ड नहीं ना लगाए, वो भी लगाऊंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको ये पीरियड भी अच्छा लगता है। कीप अप, आई एम फनी व्हेन आई एम इन द हाउस, आई एम वेटिंग फॉर 10 o'clock, इट्स सो फनी। कहती हैं कि मैं घर में होती हूँ ना, मैं 10 बजे का इंतज़ार करती हूँ, क्यों? टू लिसन टू योर लवली वॉइस एंड लवली सॉन्ग्स, कीप इट अप। थैंक यू भाविनी पटेल, ये रोज़ाना करती रहूँगी। और यहाँ पर आई हैं कौन, मेरे ख्याल से ये हैं कल्पना कुलकर्णी कुमार, के आज के बाद हम इनको कहेंगे के क्या लिखा है थोड़ी देर के बाद।
1: We've got your favorite song for every moment because we love you like that. East FM, Kenya's premier Asian mix. This is East FM, Kenya's premier Asian mix.

0: क्या कमाल किया है लता ने।
1: अब के साजन सावन में ये गाना फिल्म चुपके चुपके का है, और जिसको लता मंगेशकर ने गाया है, और जिसको आनंद बख्शी ने लिखा है, और जिसकी धुन एस टी बर्मन ने बनाई है। ये मूवी में धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर ने काम किया है। गाना अच्छा लगा, सुनाने के लिए आपका शुक्रिया।
0: और समय 1963 में एक कोह पैमा 1963, तस्वीर करें। और माउंटेनियर होते हैं ना जो पहाड़ों को उबूर करते, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, उनका शौक ही होता है कि पहाड़ों में रहना। तो एक माउंटेनियर पहाड़ पे चढ़ता है, कहाँ, ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया में, ये ऑस्ट्रियन है। तो समय अचानक एक क्या बर्फ की गली में ये फिसल जाता है, गिर जाता है। तो रस्सी के साथ इसके साथी इसको निकाल लेते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने इसको पुल करना है, खींचना है, तो वो अपना बैकपैक, वो थैला जो पीछे उठाते हैं, बैकपैक छोड़ देता है बर्फ में ही और खुद निकल आता है। अपनी जान बचानी थी। तो समय वही जो बैकपैक में था क्या, पहाड़ों पर चढ़ने वाले माउंटेनियर्स अक्सर ये बैकपैक में एक तो आइस एक्स रखते हैं, वो टोका, आइस बर्फ तोड़ने वाला आला, आइस एक्स। फिर कैमरा भी रखना होता है तस्वीरें लेने के लिए, विसल भी चाहिए अगर आप गिर जाते हैं या कहीं। तो ऐसे इस बैकपैक में थोड़े कागजात भी थे, डॉक्यूमेंट्स। खैर बैकपैक वहीं रहा, बर्फ पड़ती रही उसके ऊपर, यही तो होना था। 3,000 मीटर ऊंचा था ये ग्लेशियर, तो सन बैकपैक वहीं रहा 3,000 मीटर की ऊंचाई में। 60 साल गुजर गए, 60 years, समिन 6 दिहाइयों के बाद वो जब बर्फ पिघली है गर्मी के साथ, क्योंकि मौसमी बदलाव आ चुका है, तो ये पिघली है जब, तो पानी में निकला है ये, पानी से बह निकला ये बैकपैक, पुलिस को मिल गया। और समिन वो जो कागजात थे ना, बैकपैक तो ठीक था, वो कागजात जरा हो गए हुए थे, धुंधली हो गई हुई थी लिखाई। खैर बैकपैक खोला तो ये नाम इस शख्स का मिला, कांटेक्ट किया, ये माउंटेनियर कहाँ है। समिन 60 साल के बाद 86 साल आदमी, 86 ईयर ओल्ड आदमी जिंदा निकले और बैकपैक उनके हवाले कर दिया, क्या 6 दिहाइयों के बाद।

हो सकता है कि लता किशोर की कहानी पुरानी हो गई हो, लेकिन के की कहानी पुरानी नहीं हुई, वो नई कहानी थोड़ी देर के बाद आपको सुनाती हूँ। भास्कर पटेल फ्रॉम मैनचेस्टर कहते हैं, आज सब दोस्त जो केन्या में हैं उनको एक गाना डेडिकेट करते हैं, करेंगे जरूर, डेडिकेट फ्रॉम भास्कर पटेल मैनचेस्टर से सभी दोस्तों के लिए जो केन्या में हैं। यूसुफ बट, बहुत शुक्रिया, मुझे पता है आपकी लाइन बहुत देर से आप ट्राई कर रहे हैं। समी वो कहती हैं, एक मेरी लिसनर जिनका नाम कल्पना है, सिंस एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट हाउ लॉन्ग दे बीन लिसनिंग टू यू, आई'd लाइक टू शेयर माय स्टोरी। कहती हैं, आई केम टू केन्या 2 decades ago, कहते 20 साल पहले मैं केन्या आई। There was no 24 hour internet or cable TV back then. Radio was the only source of entertainment. कहती हैं, तफरी का सामान सिर्फ रेडियो था तब 20 साल पहले। तो कहती हैं, I had once won a prize in a question answer session on East FM and was told to collect the prize from East FM office. कहती हैं, एक दफा एक सवाल के जवाब में मुझे इनाम मिला, तो कहा गया कि आप हमारे दफ्तर में आएं और आके अपना इनाम ले जाएं। आई डिडंट नो नैरोबी सो वेल, सो फ्रेंड्स टोल्ड मी यू विल हैव टू गो टू मोम्बासा रोड। तब समय बरीचो रोड पर हमारा दफ्तर हुआ करता था। तो कहती हैं कल्पना के, मेरा इनाम 1,000 था। कहती हैं, मैं इतनी दूर 1,000 शिलिंग, 1,000 शिलिंग के लिए तो 4-10 माइल तो कुछ ज़्यादा सफ़र नहीं था। कल्पना लेकिन कहती हैं, आई फॉरगॉट ऑल अबाउट, ऐसा छोड़ के देखो इतनी दूर कौन जाए 1,000, आपका दिल बड़ा है ना इसलिए। कहती इन बिटवीन फॉर अबाउट 12 years आई वॉज इन ऑन अ फुल टाइम जॉब 9 to 5 एंड देन आई वॉज अवे फ्रॉम रेडियो, नाउ आई एम बैक। लेकिन कल्पना काफ़ी बरसों से आप सुन रही हैं और आपने कहा है कि आई एम नोन एज के इन माई फ्रेंड सर्कल, के तो अच्छा है मेरे लिए, रादर देन से कल्पना कुलकर्णी कुमार के ओके ठीक है। अब देखेंगे टुडे इन हिस्ट्री। या सर, इन 1969 मजे जोमो केन्याटा डिक्लेयर्ड किस्वाहिली एज केन्याज ऑफिशियल लैंग्वेज। समझ, ये बात आपने भुला दी हुई है, आज के दिन ये हुआ था, देख लें, 1 सितंबर है 1969, तब से आज तक कितने बरस हो गए हैं, हमारी ऑफिशियल जबान जो सरकारी जबान है वो किस्वाहिली है, मजे जोमो केन्याटा की वजह से। ऑन 1 सितंबर 1939 में जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, जर्मनी ने पोलैंड पे चढ़ाई कर दी, विच स्टार्टेड वर्ल्ड वॉर टू इन यूरोप। वो जो जंग अजीम है ना, आलमी जंग दूसरी, वो यूरोप में शुरू हुई थी आज के दिन, क्योंकि जर्मनी ने पोलैंड पे चढ़ाई कर दी। इन 1985 अ जॉइंट फ्रेंच अमेरिकन एक्सपीडिशन लोकेटेड द रैक ऑफ द आरएमएस टाइटैनिक। 1985 में वो जो टाइटैनिक डूबा था ना, उसको उसका पता लगा लिया फ्रेंच अमरीकी एक्सपीडिशन ने। 73 साल इसके डूबने के बाद, 73 years after it sank on the ocean floor south east of Newfoundland, Canada. देखें समिन, मलबे का पता चला 73 साल के बाद, जहां वो बहरी जहाज टाइटैनिक डूबा था। फिर क्या समिन, टाइटैनिक ना जाने किस वजह से, कैसी कहानी थी, कैसा किस्सा था। दर्शन सिंह लोटे, आई एम सो हैप्पी, मैं सबको नया साल मुबारक कहता हूँ।

0: This is East FM, Kenya's premier Asian mix. With news from Kenya, Asia, and around the world, this is East FM News, presented by Mark Gitau.
1: President William Ruto has left for Zambia to join other leaders for the inauguration of President Hakainde Hichilema. Hichilema secured his second term following a contested general election last month, where he defeated his main competitor Brian Mbundu Bile with roughly 61% of the vote. President Ruto's visit highlights the strong diplomatic and economic ties between Kenya and Zambia, reinforcing wider regional cooperation. Kenya Airways has announced free flight rebooking for passengers whose travel plans were disrupted by the air traffic control workers' strike as the airline works to clear backlog and restore normal operations. In a statement, the national carrier said affected customers can reschedule their flights at no additional cost. The airline said affected passengers will receive flight status notifications directly through SMS, WhatsApp and email using the contact details provided during booking. It is important to look for a moment when your spouse is calm to try and resolve conflicts. Relationship expert Moffat Kago says these moments are windows for trying to resolve differences and should be timed because they can pass and you will lose the opportunity to restore and repair your relationship.
2: You see now, if someone doesn't want to talk, you may not be able to force them to talk. It would be good to monitor what I would call the miracle moment when they came home looking a little bit better than yesterday. But at the same time, silence is also a communication.
1: Kenya's debt crisis is being driven by persistent budget deficits, forcing the government to borrow to bridge the gap between its expenditure and revenue. This is according to international relations expert Solomon Kimaita, who says part of the new borrowing is being used to service old debts and finance recurrent expenditure rather than income-generating projects, creating a vicious cycle of borrowing.
3: We import significantly more goods and services than we export, which means our export earnings are insufficient to meet our external obligations. Secondly, persistent budget deficits.
0: East FM News. East FM, Kenya's premier Asian mix. This is East FM, Kenya's premier Asian mix.
4: Bemisal Andaaz with Parveen Atom.
5: तो चलिए सामने एक मैसेज जो पहले आया था वो सुन लेते हैं।
6: सबको नमस्कार परवीन जी, अभी जो गाना बज रहा है ना आपके सजन सावन में, चुपके चुपके फिल्म से है, जिसमें धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर पे ये गाना फिल्माया है, और इसके अलावा अमिताभ और जया का बहुत अच्छा रोल था इन चारों का, और सबसे अच्छा तो ओम प्रकाश का। बहुत ही अच्छी कॉमेडी फिल्म थी ये, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए। परवीन जी, आप कितनी अच्छी अच्छी और इंटरेस्टिंग बातें बताती हैं कि बस मज़ा आ जाता है। उस पर्वतारोहित था जो, उसको अपना पुराना बैग देखकर कितनी खुशी हुई होगी इसकी हम कल्पना ही कर सकते हैं। कितनी मज़ेदार बातें और उसके साथ साथ अच्छे अच्छे गानों का छौंका लगाती है ना, तो बड़ा मज़ेदार लंच तैयार हो जाता है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छौंका आपको पता है ना?
5: जी जी, मुझे लगता है ये तड़का है ना। ओ मंजुला विश्वकर्मा, आपने ठीक कहा, अच्छी अच्छी बातें, आज ही अच्छी बात है मंजुला। कई बार मैं कितने सोर्सेज में जा कर छानती हूँ, मुझे कुछ अच्छी बात नज़र ही नहीं आती। इतनी बातें मैं नज़रअंदाज पढ़कर नज़रअंदाज करके मैं ये चुनती हूँ आपके लिए। तो ये इत्तफाक है कि ये बैक पैक वाली खबर सामने आ गई, तो मैंने कहा ये तो ज़रूर शेयर करनी है। थैंक यू। और आप हैं प्यारे
7: तोता मैना की कहानी। ये गाना फिल्म फकीरिया का है, 1976 की मूवी है, जिसको किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया है और जिसकी धुन राजेंद्र जानी ने बनाई है। ये पुराना गाना अच्छा लगा सुनाने के लिए, आपका शुक्रिया।
5: और समय मैंने आपको माँ की भी खबर देनी है, पर जरा थोड़ी देर के बाद। पहले डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं अनुराग फिल्म विनोद मेहरा मौसमी वॉज ब्लाइंड एंड नूतन अशोक कुमार, ये फिल्म अनुराग के सितारों की बात कर रहे हैं कास्ट की। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच इंडीड। माँ की थोड़ी देर के बाद, ठीक है।

और समझ जो माँ की बात मैंने करनी थी, आज की माँ है ये, समझ कोई बुजुर्ग बूढ़ी माँ नहीं है, महाराष्ट्र में, इंडिया महाराष्ट्र में एक महिला ने भीड़ जिले में, समझ ये महाराष्ट्र का कोई जिला है, डिस्ट्रिक्ट भीड़, इसमें मैराथन दौड़ जीत ली है। मैराथन समझ ये लंबी दौड़ होती है, न जाने कितने मील कितने किलोमीटर्स की, आप इसको छोटा या लंबा कर सकते हैं ऑर्गेनाइजर्स, लेकिन मैराथन दौड़ इन्होंने जीती है। अजीब क्यों हुआ ये कि उन्होंने साड़ी पहन रखी है, जी माँ ने साड़ी पहन रखी है और जूतों के बगैर भाग रही है। समझ सड़क पर जूतों के बगैर भागना, टामैक है सड़क, जूतों के बगैर भागने वाली रमाबाई रणवीर हैं। ओके, उन्होंने अपनी तो सलाहियत, अपनी रफ्तार तो नहीं टेस्ट करनी थी, उनका मकसद मैराथन में जीतने का कुछ और ही था। 3,000 रुपये का इनाम, 3,000 रुपये का इनाम हासिल करना था, है तो बहुत छोटा इनाम समय, लेकिन मकसद देखें रणवीर रमाबाई का, मकसद क्या था। कहती हैं कि बेटी की स्कूल की किताबें खरीदनी थी, और 3,000 की तो नहीं, पर उसमें मैंने कुछ बचत करके रखी है, उसमें ये इजाफा करके उसकी किताबें लूँगी। शौहर नहीं है, दो बेटियों को पाल रही है, नंगे पांव दौड़ लगा दी। समिन माँ की ये जो कुर्बानियाँ होती हैं ना, इनके कितने चेहरे हैं गिन पाएंगे।

0: क्या बात है, उस माँ की दौड़ लगा दी। बेशक 3,000 रुपए थे, लेकिन समय उसने किताबें खरीदनी थी अपनी बेटी के लिए, और इतनी भी उम्र रसीदा नहीं है। अब यहाँ पर लागड़िया साहब कहते हैं कि हैव अ नाइस एंड प्लेजेंट मंथ अहेड, डियर प्रेजेंटर, एंड ऑल योर प्रेयर्स आर इनफ फॉर यू, ऑल आर प्रेयर्स आर इनफ फॉर यू। बहुत शुक्रिया लागड़िया साहब। अस्सलामु अलैकुम, जस्ट रियली एंजॉयिंग द प्लेलिस्ट ऑफ 70s एंड 80s, क्या बात है, फैंटास्टिक चॉइस, कीप इट अप सिस्टर। ये कहा है फातिमा कासम अली ने। जी फातिमा, आइंदा भी यही करूँगी। के ने कहा है कि मैराथन्स आम तौर पर तो 42 किलोमीटर की होती हैं। या अब यहाँ पर हैं अजय पाल।
1: हेलो सलाम प्रवीण जी, मिर्जा गालिब साहब ने बड़ा खूब कहा है, दिल का जख्म कभी दिखाया नहीं जाता, गम का किस्सा हर बार सुनाया नहीं जाता। तुम मेरे चेहरे को जी भर के देख लो, तुम मेरे चेहरे को जी भर के देख लो, क्योंकि बार बार कफन हटाया नहीं जाता। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, थैंक यू।
0: ओफ अल्लाह, क्या बात है, कहते चेहरे को गौर से देख लो वरना बार बार कफन हटाया नहीं जाता। कमाल है। जतिंदर ने भी कुछ कहना है।
2: हेलो प्रवीण जी, डाका डाले तेरी बंसे, किन्ना सोहना है म्यूजिक, किन्ना सोहना है वर्डिंग, बहुत पसंद आया, थैंक यू जी। हेलो प्रवीण जी, आता बहुत बेस्ट तुझे गाना लाता बावा थी है ना। मैंने एक गल याद आ गई, स्टैंडर्ड 8 सी है, मैं पिंड गई सी पढ़ती सी, तो एक ना साड़ी ब्रेक होंदी सी म्यूजिक टाइम दी, ते ओदे विच एक कुड़ी सी, उन्हें आहा शब्द आहा गीत जरूर गाउंदी सी। असी उन्हें एक दिन पूछा कि तू यह तेन क्यों लाइक कर दी तू, कहने मेरी स्टेप मदर है, मैं अपनी माँ को बहुत मिस कर दी हाँ, तो मैं याद आ गया, मैं कह चलो शेयर कर ला थोड़े नाल। मावां दा तां कोई कर्जा नहीं दे सकता। थैंक यू जी।
0: बिल्कुल सही जतिंदर, बहुत अच्छा आपने किस्सा बयान किया। दर्शन सिंह लोटे, व्हाट अ लवली पंजाबी सॉन्ग। जी हाँ, लखबीर, ब्यूटीफुल सॉन्ग, मावां ते तियां, बहुत ही खूब रिश्ता है। परवीन जी, मदर कैन डू एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स फॉर हर चिल्ड्रन, द क्वेश्चन इज विल द चिल्ड्रन टेक केयर ऑफ हर इन टाइम ऑफ नीड। ये सवाल है अमीर अली राना कि जब माँ को बच्चों की ज़रूरत होती है तो क्या वो वही कर सकते हैं जो माँ ने उनके

बहुत खुश हैं, आप भी बहुत खुश हैं, और जय श्रोम भाई आप कहते हैं व्हाट अ फैंटास्टिक सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, अच्छी बात है आप इंजॉय कर रहे हैं, जयश वॉइस से। समीन सवाल, 25 मिनट लेट हो गया है बातों में। सवाल आज का ये है, मैं आपको एक नाम देती हूँ, ओयो नीम्बा, ओयो नीम्बा, दुनिया के कम उम्र तरीन, सबसे कम उम्र के शाह थे यानी किंग। ताज कब पहना? 1995 में, 1995 में। तब क्या थी उम्र? 3 साल के थे, 34 साल के हुए, और समीन आप चल बसे हैं। 1995 में इनको छोटे से बच्चे थे, कहा कि ये वारिस हैं पिता के, उनकी वफात हो गई थी, बना दिया ताज पहना दिया, उनको शाह बना दिया, ओयो नीम्बा, और अब चल बसे हैं। समय कहाँ के शाह थे ये? बयान में नीम्बा की मौत का कारण नहीं बताया गया कि क्यों इतनी कम उम्र में, 34 साल की उम्र में। आप मुझे बताएं ये मुल्क कौन सा था, या फिर किंगडम बता दें, कौन सी किंगडम के का इनको राजा बनाया गया था। और अभी अभी अमीर अली राणा ने मां पर जो कहा था, मुझे ये गाना याद आ गया।

रनेजा नायर ने कॉल किया है, कहते हैं कि किसी ने पूछा कि क्या जो कुर्बानी माँ देती है उसकी बेटी भी वही देगी या औलाद, तो कहती हैं कि एक बेटी जब माँ बनती है ना तब उसे ये पूछना चाहिए कि तुम अपनी माँ के लिए क्या करोगे, तब उसको पता चलता है कि ये रिश्ता इसकी कीमत क्या है जब वो खुद माँ बनती है। और कहते हैं हर तरह की आपको माएँ मिलेंगी, कुछ माएँ जिन्होंने गलतियाँ भी की हों, समय लापरवाही भी होती है बच्चों के साथ, कुछ माओं ने अपना भविष्य सोचकर बच्चों को शौहर के हवाले करके अपनी ज़िंदगी को रोशन कर लिया, ऐसी भी तो माएँ थीं। तो कहती है कि हर टाइप ऑफ माँ आपको मिलेगी, लेकिन ये बॉन्ड बड़ा यूनिक है। ठीक है, अब चलते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपने कहा है कि वो गाना प्रकाश कौर, प्रकाश कौर सुरेंद्र कौर का और मास्टर ऑल इन नो हिज मास्टर्स वॉइस 1942 में ऑल इंडिया रेडियो के लिए रिकॉर्ड हुआ था, क्या ऐतिहासिक सॉन्ग था। और परवीन जी, द किंगडम इज डैश डैश, सो फर्स्ट कॉलर टू गिव मी द राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिल्म छोटा भाई कभी आपने सुनाया है, रहमान थे ललिता पवार, क्या बात है, और डेजी ईरानी आपने कहा, ओके थैंक यू। चलते हैं पर्दे पर, देखते हैं कि किस किस ने कोशिश की है। फातिमा कासम अली, वेल डन, बिल्कुल। लखबीर नॉर्वे नहीं है, सोनल मोदा करेक्ट आंसर। जैनब, वाह बिल्कुल सही। अमीर अली राना, बिल्कुल। और शोभना और दिनेश दोनों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, करेक्ट। सना काना, माँ मुझे अपने आंचल में छपा ले, कहती मुझे इतना अच्छा लगता है, हमारी तमाम माओं को जन्नत दे खुदा जो नहीं है। और नूतन का भी आपने कहा है डॉक्टर साहब, अच्छा रितु बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। आशा भिमानी, आपका भी बिल्कुल सही जवाब है। सो समिन, ओयो नीमबा जो है वो एशियाई नाम तो है नहीं, ना ही वो कोई वेस्टर्न नाम है, ठीक है, इसका मतलब वो कहाँ के होंगे। 0701 106 106।

0: क्या डुएट है अश्विन जोशी?
1: यस, ये लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का रियली ब्यूटीफुल,
0: बहुत, कौन सी फिल्म है ये?
1: ये फिल्म थी इज्जत, धर्मेंद्र और तनुजा और साउथ इंडियन सुपरस्टार जयललिता, वो भी थी साथ में।
0: अच्छा, वो जयललिता जो फिर पॉलिटिक्स में भी आई है?
1: यस यस यस, सेम सेम।
0: ओके,
1: लव स्टोरी थी, पर मैंने ये फिल्म देखी नहीं थी, मालूम ही है स्टोरी का कोई, लेकिन लव स्टोरी थी ऐसा कुछ सुना है।
0: इज्जत है फिल्म का नाम है।
1: यस, और म्यूजिक था पैरेलल का।
0: क्या बात है, बहुत ही
1: अच्छा। एंड आई एम सपोज आई फील दैट सॉन्ग्स वर रिटन बाय आनंद बख्शी एज वेल।
0: ओके,
1: यस, एंड फिल्म परवीन जी हिट बन गई।
0: इज्जत का हमने भी देखी होती है ना, जिन्होंने जो एंटरटेन हुए वो लकी है।
1: बस यही उनकी जानकारी थी, मुझे आपको बतानी थी। मुझे बहुत पसंद है,
0: मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है जब भी सुने, दिल खुश कर देता है।
1: यस, एग्जैक्टली।
0: थैंक यू अश्विन,
1: थैंक यू प्रिंसिपल।
0: और अब चलते हैं मेजर वांजा, और कहते हैं कि पता है क्या, आई मिस माई मदर सो मच, आई जस्ट लॉस्ट हर एंड आई हर्ड योर लवली सॉन्ग। बहुत अच्छे मेजर वांजा। सब चलते हैं कुलवंत सर्वे के पास, उन्होंने सही जवाब दिया। शब्बीर अहमद फ्रॉम लंदन, सलाम्स टू एवरीबॉडी। वालेकुम अस्सलाम। और दर्शन सिंह लोटे, करेक्ट आंसर। अमीना, आपने ओयो नीम्बा का कहा है और बताया है कहाँ और कब इनकी हुई थी, 1900, जी हाँ, आपने कहा ही डाइड 28th of August 2026, या अभी उनकी वफात हुई है। सोनल मोदा, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, बहुत अच्छे। और डॉक्टर साहब ने कहा है कि इज्जत में धर्मेंद्र डबल रोल में थे और तनुजा भी इनके साथ थी। बहुत शुक्रिया आपका। और समय ब्रेक का टाइम है, लेकिन मैं अभी आपको बता देती हूँ कि आंसर है युगेंडा की टोरो किंगडम के राजा हैं थे ओयो नीम्बा। अब ना जाने किसको मुकरर करेंगे, ना तो उनकी शादी हुई होगी मैं श्योर हूँ, और ना उनकी कोई औलाद होगी। तो ये युगेंडा की बात हम कर रहे थे, टोरो।
2: East FM, we've got your favorite song for every moment, because we love you like that. East FM, Kenya's premier Asian mix. East FM, Kenya's premier Asian mix.
3: East FM,
2: celebrating your favorite occasion. East FM,
3: Kenya's premier Asian mix.
2: Asian mix.